0: ये सही कुछ
1: शे था बता
0: सही कुछ हो
1: क्या क्या किश
2: क्या क्या
3: हो क्या ला
0: ये दी दी दी, दी लम्सा सही कुछ हो रहे हाँ
3: दिले लो जो
0: ये ये ये जा बा कुछ हो ये लम्सा कुछ हो
3: क्या ला देरी Tadong ji yore. De.
0: Dos kuda, dos kuda. Ye, ji ru chun da de ke zhi xin yan ba.
3: Oh. Guan le na xia xi.
0: Qian de yong a.
3: Ke yin yore, ji ba ran yong. Wo xin. 하고 싶게 예.
4: 걔라. 저라. 나 리그유. 녀 죽이다.
3: 나 리그도 수.

0: उन्हें रुक गए। चेतन का रानी मुरान चेका जो।
1: लि युवन प्यामी यहू दिन जेल, दो दिन जेल थोंग गए कारी इन।
0: यूनी कर चेतो। लि युवन को क्या चुंगा ना चुगियो रिसे। लोशिया को न दोषास ने बारके चुंचे चुंबर सर। मासे तो शंशं के मुरान क्या दोषास ने चुंबर सा।
1: 叫我专家内来追讨不的，实际点不是去买的。表面经营的，点出商店的工资要的。表面书记呢，叔叔叫个廿三百块点子，起了强调要买的。一平让个叫三六七，没让你就能按照那你们看些是伢的那阿姆拉的，干咪收收的，我。
0: 用啊。